0: चल गए रा
1: का बोले
0: चल गए
1: का
0: चल गए
1: का
0: आ चल गए
2: beda masa satu rasa sukun spesial baru.